0: दोनों बिगाड़ दिए, लीनियंसी छूट, प्यार
1: जी, बिल्कुल
0: नहीं बिगाड़दा,
1: जी
0: प्यार
1: जी
0: नाल बंधदा बच्चा तुहाडे नाल।
1: बिल्कुल
0: प्यार ते छूट विच फर्क है। तुसी
1: बिल्कुल
0: प्यार,
1: बिल्कुल
0: तुसी छूट नू प्यार दा नाम दे दिता, तू
1: जी
0: कर
1: जी
0: ला जो मर्जी, असीं हैगे आ,
1: हाँ
0: ओह
1: बिल्कुल
0: छूट
1: जी
0: है, ओह प्यार नहीं है।
1: जी जी
0: उत्थे तुसी
1: बिल्कुल
0: कंफ्यूज्ड हो,
1: बच्चे दा इच कोई बहुता
0: बच्चे दा
1: कसूर
0: कोई
1: नहीं है।
0: कसूर नहीं है।
1: बिल्कुल
0: उत्थे
1: ठीक है
0: तुसी कंफ्यूज्ड हो कि
1: जी
0: तुहानू
1: जी
0: इह लगदा है कि इह मैं प्यार कर रहा।
1: जी जी
0: प्यार बिल्कुल नहीं बिगाड़दा, तुसी
1: जी
0: जिन्ना
1: जी जी
0: मर्जी
1: जी
0: करो।
1: जी जी जी बिल्कुल सही है। तो ये तो वाकई एक चीज़ जिहड़ी सामने उभर के आउंदी आ कि पेरेंट्स दा जिहड़ा प्रभाव है बच्चे दी शख्सियत ते पैंदा है, और उन्हां दी ही एक तरह ना अक्स वो बनदे आ समाज अगे किदां दा बनेगा, ये पालन पोषण बच्चे दा किस तरह दा हो रहा है घर विच, वो अगे गल जुड़ जाती है जाके। तो आपां देखिया कि वक् वक् टाइप्स दियां पेरेंटिंग जिहड़ियां ने, पालन पोषण दियां जिहड़ियां ने तरीके, ढंग तरीके अपनाए जाते आ।
0: बिल्कुल,
1: ते तुहानूं जिहड़े ज़्यादातर काउंसलिंग लई जदों तुसीं जांदे हो,
0: हाँ
1: तुहाडे कोल
0: जी
1: सब तों वध किहो जिहे केस जिहड़े आउंदे आ कि इहनां नूं तुसीं नजिठदे हो, उहनां नूं काबू करदे हो
0: हाँ जी।
1: ते उहनां नूं बैलेंस करदे हो?
0: देखो डिफरेंट एज ग्रुप्स दे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट केसेस होंदे हैं।
1: जी
0: रिसेंटली जिस तरह हुण साडे नाल एक बारी होया कि कोई 9th 10th दा बच्चा है,
1: जी
0: एवरेज है वो पढ़न दे विच,
1: जी जी
0: पेरेंट्स दी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है,
1: जी
0: पता
1: बिल्कुल
0: नहीं की बन जाए। और
1: जी
0: एक्सपेक्टेशंस दा रीजन की है,
1: जी
0: क्योंकि मेरे जान पछाण दे जिन्ने भी लोग है उन्हां
1: जी
0: दे बच्चे बहुत हाईली क्वालिफाइड है,
1: जी
0: ते
1: जी
0: मैं उन्हां दे नाल विचरना है,
1: जी जी जी
0: इस करके
1: बिल्कुल
0: मेरा बच्चा भी हाईली क्वालिफाइड या किसी अच्छी लाइन च या एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन च
1: जी
0: होना
1: जी जी जी
0: चाहिए।
1: बिल्कुल
0: क्योंकि साडे घर च सारे डॉक्टर इंजीनियर है, तो मेरा भी होना चाहिए।
1: ये भी उत्थे पहुंचे जरूर भावें जिवें मर्जी होए।
0: पर हर बच्चे दी कैपेबिलिटी एक जैसी नहीं होंदी,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी,
0: तुहानू ये देखना पड़ेगा कि तुहाडा बच्चा किस चीज़ दे विच अच्छा है,
1: कितने स्टैंड कर रहा है।
0: कितने स्टैंड। एक्सपेक्टेशंस उन्नियां ही रखो।
1: जी जी
0: दूसरी
1: बिल्कुल
0: गल, बच्चा ये सोच के कदे नहीं पढ़ेगा कि मेरे माँ बाप लिए मैं पढ़ना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जदों उन्हें ये लगेगा कि मैं अपने लिए पढ़ना है,
1: जी
0: उदों
1: जी
0: वो पढ़ेगा।
1: उदों ओहदी रुचि आएगी ते उदों ही
0: हाँ
1: ओह अगे चलेगा। बिल्कुल
0: हुण मैं इस केस नूं बहुत लंबा मतलब फॉलो किया,
1: जी
0: और मैं ये पाया कि पेरेंटिंग दे विच बहुत प्रॉब्लम्स है। उहनूं
1: जी
0: सारा दिन 1 घंटा लैक्चर देंदे है,
1: जी ब्रेन वॉश हो रहा उहदा।
0: उहदा उही चीज़ां रिपीट होंदियां, वो बच्चा फेड अप हो गया,
1: जी
0: वो
1: जी जी
0: कहिंदा नहीं पढ़ना,
1: हाँ बिल्कुल
0: मैं हुण पढ़ना ही नहीं, मैं तां ये कर नहीं सकदा जो तुसीं कह रहे हो,
1: बिल्कुल ठीक
0: मैं तां
1: है
0: हुण पढ़ना ही नहीं।
1: जी, बिल्कुल ठीक है
0: जदों बच्चा साडे नाल गल करदा है,
1: जी
0: असीं उहनूं मोटिवेट करदे हैं, वो
1: जी
0: असीं उहनूं ये कहने हैं कि तू 10वीं किसे तरीके नाल कर लै, उस तो बाद तू जो करना चाहना तैनूं ऑप्शंस मिलनगियां।
1: जी
0: साडा सिस्टम इदां दा है कि 10वीं तक तुसीं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं,
1: पढ़ने पैणे हैं।
0: पढ़ने
1: बिल्कुल
0: पैणे हैं,
1: बिल्कुल
0: बट उस तो बाद ऑप्शंस है, फिर तू वो करें जो तेरा दिल करदा है, ठीक है। वो मोटिवेट हुंदा है, वो खुशी खुशी घर जांदा है,
1: जी
0: वो
1: जी
0: घर
1: जी
0: जांदा है उहनूं फिर वही।
1: फिर लेक्चर शुरू हो जाता है, पुरानी गल जिहड़ी सीडी पै जाती है वही।
0: हाँ
1: बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये एक जिहड़ा है फोर्स्ड कह लो उन्हां दे उत्ते कीता जाता है, जिहड़ा
0: हाँ
1: अपने
0: जी,
1: थोपिया जाता है उन्होंने
0: थोपिया
1: अपनी पंड
0: जाता है।
1: चुकाते हैं। कई बार ये होंगे कि माता पिता जो नहीं बन सके जीवन च बनना चाहते सी, वो चाहते ही
0: बिल्कुल
1: बच्चा बने वो
0: बिल्कुल,
1: घट्टो घट्ट वो तो बने।
0: अपनियां उम्मीदां दा भार लद दिंदे आ असीं बच्चियां ते।
1: हाँ जी हाँ जी
0: बच्चे एक इंडिविजुअल एंटाइटी है,
1: जी जी
0: तुहानूं इह
1: बिल्कुल
0: मनना पएगा, वो तुहाडे
1: जी
0: बच्चे है ठीक है, पर
1: जी
0: वो
1: जी
0: एक वक्खरा ह्यूमन बीइंग भी है
1: बिल्कुल
0: जिहदी
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: डिजाइनिंग कुछ डिफरेंट है तुहाडे नालों।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी। ये तो मन के चलना पैना,
0: हाँ जी
1: जे जिन्नी देर तक ये गल नहीं आएगी
0: हाँ जी
1: ते एक होर जिहड़ा आपां कहिंदे ना बल्दी ते तेल पै जांदा है। ते आम मैं कई बारी बच्चों नूं मिलदा है जां घरां विच आम आपां देखदे आ, एक सब तो बड़ा डायलॉग हुंदा है माता पिता दा कि लोकां दे बच्चे नूं देखो
0: हाँ जी कंपैरिजन।
1: कंपैरिजन, ये किन्ना कु जरूरी है
0: बिल्कुल
1: कि
0: जरूरी नहीं है, बिल्कुल अनहेल्दी है,
1: जी जी
0: बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लोगों के बच्चे की भैन भरावां च नहीं होना चाहिए,
1: बिल्कुल बिल्कुल जी
0: ठीक है। जैलसी डिवेलप होंगी है ये नाल,
1: जी जी
0: ठीक
1: बिल्कुल
0: है। कई बार वो तुहाडा कोई बहुत अच्छा फ्रेंड होंदा है,
1: जी
0: बार बार उसकी एग्जाम्पल तुहानू दित्ती है, नहीं तुहानू उस तो चिढ़ाउण लग जाती है
1: हाँ
0: कि
1: बिल्कुल
0: जदों देखो
1: बिल्कुल
0: ये इदा करता तो मेरे नाल इदा होंदी है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तुसी
1: बिल्कुल
0: उसदी
1: ठीक है।
0: अचीवमेंट्स ते खुश नहीं होंदे,
1: बिल्कुल
0: तुसी जैलस होना सीख जाते हो।
1: वो एक तरह की गिरावट आनी शुरू हो
0: हाँ
1: नेगेटिविटी जी
0: जी
1: है
0: हाँ
1: उनपे,
0: जी
1: लेकिन ये बहुत ही व्यापक है।
0: बहुत व्यापक है, क्योंकि रीस करन की आदत है सानू,
1: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ
0: ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
1: ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ।
0: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

महफिल मित्रां दी हर शनिवार ते एतवार तुहाडे अपने दुआबा रेडियो दे उते शाम नूं 8 बजे प्रोग्राम विच शामिल होण लई संपर्क नंबर 9378355 94 प्रोग्राम महफिल मित्रां दी।

0: वार की एक भूख मार लेंगे मुराद अंदर
1: चढ़ती जवानी जद आउंदी ए पुचाल वांगू धरती दा पत्ता पत्ता चुल्ला
0: सा पीबे यू

0: लिखूंगा, कुराया वो लहू लुहान स्वाभिमान लिखूंगा।
1: वाह वाह जी वाह, वाह जी वाह।
0: लिखूंगा वो रातें जब तकिया में

0: पुत्र मैं प्यारे आनू तो
1: श्रीकाल
2: जी
0: सदा गुलाब दिंदा हां ओए जो अगो कौड़ दे मैनू मुंह भन
2: दे
1: ओ तो कर दे
0: जवाब दिंदा हां असी कदे भीख नहीं मंगदे दानिया दे
1: फिर तो
0: दान दा पुत हां हक माइक चीज ना भुलनी ओए मैं किसान दा पुत हां सिंगा कई वार जीत
1: जी
0: केड़ी दिल्ली दी गल कर दे कंटी सदा सिंगा गल पाई ये जेड़ी बिल्ली दी गल कर दे मैं ता पूरी दिल्ली विच

0: मैं गुरु ग्रंथ
1: साहिब
0: गीता ते बाइबल कुरान दा पुत हां। हाक माइक चीज
1: बड़ा।

अपने खातर दुनिया मर दी मिट दी आई किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई चरखड़िया ते चढ़ना बंद बंद कटवाना बड़ा ही औखा है सरबंस बार के धर्म निभाना बड़ा ही औखा है मखमल छड़ के कंडे आते सोना बड़ा ही औखा है।

ये रचना लिखी हुई है हीरा मेगो वाहिया जी ते एस बेटी नू उना दे पिता मलकीत बुलेयाल जी जिहड़े आ बहुत बखूबी जिहड़ा पूरी मेहनत दे नाल तैयारी करवा रहे ने। असी मलकीत जी दे भी बहुत बहुत धन्नवादी आ ते सिमी सोतला जी नू जिहड़ा आ प्रोग्राम गाउंदी शाम दे विच जी आया कहिंदे हां। सिमी जी थोड़ा स्वागत है।

आंख धोखा है क्या भरोसा है, सुन लो दोस्त तो चक दोस्ती का दुश्मन है। आंख धोखा है क्या भरोसा है, सुनो

एहसास करो ओ मेरी माँ है कंबदी, जद हवा चलेगी ठंडी तन नो चंबदी, एहसास करो।

0: चल अड़िया हाथ फड़िया पा तुर चलिए चन दी सैर नू। चल अड़िया हाथ फड़िया पा तुर चलिए चन दी सैर नू।
1: मम्मी विशेष जी दी रचना चन दी सैर दे नाल ही असी इस काम्य फल दा इथे ही समाप्ति करने आ ते अगली काम्य फल तक हरवंत सिंह नूं दिओ आग्या। हरवंत सिंह वल्लों एक बार फिर सारे स्रोतियां शायरां नूं आदाब नमस्कार सत श्री अकाल कुदरत खैर करे अलविदा आमीन प्यारे दोस्तों।